न संतोष परम सुखम न तृष्टयां तपो व्याधि न तृष्टयां तपो व्याधि न च धर्मा

0: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 2 अगस्त 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
2: भूमिका श्रीमद् भगवद गीता की प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत अपने प्रथम दिव्य प्रवचन में भगवान बाबा गीता के माध्यम से मिलने वाली शिक्षा और आचरणीय गुणों की महानता को रेखांकित करते हुए युवाओं के लिए गीता को एक अत्यंत प्रभावपूर्ण पथ प्रदर्शिका सिद्ध करते हैं। स्वामी प्रश्न करते हैं कि वास्तव में गीता का सार किसमें निहित है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीनों को महत्व दिया गया है, तो कुछ लोग गीता को योग शास्त्र के रूप में देखते हैं, परंतु स्वामी ने गीता के प्रथम और अंतिम श्लोकों से धर्म और मम शब्दों को चुनकर उनके मेल से गीता के सार तत्व को सुबोधगम्य बना दिया है। गीता से संबद्ध अनेक जटिल प्रश्नों का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए स्वामी ने इसे संसार सागर की यात्रा करने वालों के लिए एक ज्योति स्तंभ के रूप में निरूपित किया है।
3: पूर्ण प्रेमयंगे कुटुंब सौख्यं सत्यं त्याग शांति चांतुनु पूर्ण प्रेमयंगे कुटुंब सौख्यं सत्य त्याग शांति चांत